हरे गामण तदनु जति सती संतोखी गामण तदनु वीर करारे गामण तदनु पंडित पंडरखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गामण तदनु मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावन तुदनु रतनो पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनु जोध महाबल सूरा गावन तुदनु खानी चारे गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनु गावन ज्योत पावन

सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात शाहो शाहपत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहे आ जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवट चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह ना जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तब सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया करम मिले नाई ठाकर हाईया आखण वाला क्या बेचारा सिवती भरे तेरे भंडारा जिस तू दे तिसै क्या चारा नानक सच सवार नहारा सा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाउ साचे नाम की लागै भूख उत भुखै खाए चलिए दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आग थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट न जाए ना उमरै न होवै सोग दिंदा रहे न चुकै भोग गुण ए हो और नाही कोए ना को हुआ ना को होए जे बड़ आप ते बड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात कसम

दशन बजायो। आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार सीखो हमारी। सगल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सत्रण को बल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की वीर पछानत। चीटी ते गुंचरिया स्थूला, सबर कृपा दुष्ट कर भूला, संतन दुख पाए दे दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक पीर पछाने, घट घट के बड़ बड़ की जाने, जबत कर करा कर तारा, प्रजा धरत सब देह अपारा। जब आ कर करत हो गब हूं तुम मैं, मिलत देह दर सब हूं, जेते बदन सष्ट सब तारे, आवे अपनी बूझ उचारे। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाखो भेवना बाबत भेदा, ताको कृपा हनर मानद, महामूढ़ गज भेद न जानत, महादेव कहो कहत सदाशिव।

रंग भयो राव गई बुब्बा अंडा जेर सेत जगीनी उद्भुज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमड़ भयो संग्रे किठा सगरी सुष्ट दिखाए अचंब भया जुगा सुरुप स्वयं बबु रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जते उठ बतुत पाता सकल मरेश करो रण गाता जे अस्तु तब शरणी भरे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरुख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट से बटारे जो काल को एक बार ध्याय है ताके काल निकट न है रक्षाए ताय सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाय ने हर हो ताके ताप तनक मैं हर हव रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्वा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा

अपना जान मुझे प्रत परिया चौन चौन सत्र हमारे मरिया देख तेग जग में दौ चल राख मैं और न दलय तुम मम ग्रह सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दा जान कर कृपा करहो मोहे हार प्राम्यान द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर धारा दा जान हाथ उबारो हमरे सब ऐरियन संगारो प्रथम धरो भगवत को ध्याना बहर करो कविता बिदनाना किशन जथा मत चरत्रो चारो जू गए कबले हो सुधारो कविवाय दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हो जग माहे ज्योते प्रभु को त्याए हैं अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जंदुई एक है बिबिचार कश नाहे जलते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए कभी बाज दोहरा ठाट भयो मैं जोर कर बचन कहाँ सर न्याय

कोटक विषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा गते रावस क्रूर जले दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चापई जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे विषण भगत की ए फल होई याद ब्याद शब सके न कोई समत सत्रह सहस पचावन हाड़ वधि प्रथम सुख दावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल भरी लव लियो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तर सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते गौ मांग तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सीमृत शास्त्र वेद सबै बहुपे

सदा सुख मानव असै दुख संसारे खोवे। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम काल खतोवे। सुकहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए। दर्शन परस्याए गुरु कै जन्म मरन दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दिन ते पहर पहर ते करियां

जिस कृपा करे सो पाए, बिन नावै सब दुख है, सुख तिस जिस मन वसाए, सब नावै नू लोच दी जिस कृपा करे सो पाए, बिन नावै सब दुख है, सुख तिस जिस मन वसाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु, चवर तखत दे मालक, हाजरा हजूर जाहरा जहूर, सर्व कला भरपूर, अमृत दे दाते गुरसागर रतनी भरपूरे, अमृत संत जुग है नहीं दूरे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरां दी गोद विच सवाए मान, गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ, आओ बहुत ही बटभागे हो सतगुरां दी गोद विच बैठ के कथा कीर्तन सुखदाई, कथा कीर्तन सरवण कर रहे हो। जिस वक्त धन गुरु नानक पातशाह सुल्तानपुर लोधी की धरती ते आए आ, सतगुरु जी ने सब तो पहला अपनी भैन के घर विच प्रवेश किया, क्योंकि इस धरती ते पहली सिख बेबे नानकी है। आखो सतनाम। जिथे दुनिया के लोग दुनिया के धर्म यह गल कहिंदे सी औरत धर्मी नहीं हो सकती, ये धर्म के कर्म नहीं कर सकती, उत्थे गुरु नानक साहब ने सब तो पहला

नाना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब मैं चानन होए गुरु साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभावै सुवारती होए हर चरण कवन मकर हंद लोभित मनो अंधनो मोहि आय प्यासा कृपा जल दे हे नानक सारंगो होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे का डंडौत पुन वड्डाहे राव साकत हर साधने जानिया तिन अंतर हऊ मैं कंडाहे ज्यों ज्यों चले चुभै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडाहे हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाहे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाहे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो हो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाड़ चलो हर लाहा या गै बसनु सहेला औद घटै दिन सरेना रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ यो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पे आवै हो रस अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई ब्याजो हर गुरते मने भसे राओ निज घर महल पावो सुख सहजे भौर न होए गो फेरा

मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु।

नानक संग मोहे उदारु सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बस प्रभु कै सिमरन दुख जम नस प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै

तष्टपदी जय मात्पिता सुतमीतना पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जय महापयान दूत जम दलाय तह केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिर माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख रेरे सगल सृष्ट

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस्त कान बिखोट गवावे एक भीना दे दस भी हेरले तो मूढ़ा कहो कह करे जिस ठाकुर सियो ना।

अवध जन्म मरा, इसके अंदर बसे निरंकार, इसकी सीख तरह संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है माने, आप है आप, आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाप सयानम सगल ते रहत, सब कर जाने आत्म की रहत, जिस भावित लाए लड़दाए, तांतरंतर रया समाए, सो सेवक कृपा करी, निमक निमक जप।

ब्रह्मज्ञानी मानव प्रकाश जैसे तारू भरे आकाश ब्रह्मज्ञानी का मित्र सतर समान ब्रह्मज्ञानी का नाहि अभिमान ब्रह्मज्ञानी उच्चते उच्चा मन अपना सबते नीचा ब्रह्मज्ञानी सहजन भय नानक जिन पर व्याप करे ब्रह्मज्ञानी सकल की रीनात्म रस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब ब्रह्मया ब्रह्मज्ञानी ते काश बुरा न भया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल ज्योता

ब्रह्मज्ञानी जब संग ब्रह्मज्ञानी संग सकल उदार नान ब्रह्मज्ञानी जप सकल संसार ब्रह्मज्ञानी का एक रंग ब्रह्मज्ञानी का बस ब्रह्म संग ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार ब्रह्मज्ञानी का नाम प्रवार ब्रह्मज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्मज्ञानी अहम बोध त्यागत ब्रह्मज्ञानी

ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सत जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

नहीं भी होगा। तैसा स्वर्ण तैसा सुमाटी तैसा मृत तैसी भी खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जोगत नानक।

ब्रह्म के रंग जैसी मत तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करहे अनेक जाने अंतरा पारा वार नानक रचना ब्रबरची बहुत अनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बान भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कबका विचारे कई कोट नतन नवतन नाम ध्यावे नान करते कांत ना पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर

कब भिखारी नीच का साजा, कबू अप कीर्तमय आवे, कबू भला भला कहावे, जो प्रभु राखे तभी ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह। कबू होय पंडित करे बखियान, कबू मुन धारी लावे ध्यान, कबू ताट तीर्थ शनान, कबू से साधक मुग्ञान, कबू कीट हस पतंग होय जिया, अनुजोन भरमे भरमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभावित मिन चावे, जो तस्भावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय। कबू सा संगत पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर हो ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का रही विनाश।

सदाभियोग संत के निंदा दोख में दोख नानक संत पावता उसका भी है मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी सब त्याग, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुखना सुखते ठराए, संत के दुखी को ना ठाव नानक संत भावे तलाए मिलाए, संत का दुखी अद बीच टुटाए, संत का दुखी कते काज ना पहुंचाए, संत के दुखी को ध्यान भरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए,

तराजु अंधकार दीपक प्रकाश, गुरुदर्शन देख मन हुए विकास। जो माहो ध्यान में मार्ग पावे, तुम साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तन संतन की बांछो दूर, नानक की अलोचा पूर। मन मूर्ख काए बिल लाइए, प्रभु लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभु देवन हार वर त्याग, तुम तसे चितार। जो कुछ करे सोई सुख मान, भूला काए फिरे अजान, कौन बसताई तेरे संग, लपट रे और असलोभी पतंग। राम नाम जब हृदय माहे, नानक पात सेती कर जाहे।

तान तान कै सब कोय मुकुजर हरदर के सोयवा पार दुर्लाभ पारे नानक था के सदबलहार चरण साध के धोए धोए प्योर प्रसाद कपना जियो साध की धूर करो शनान साध पर जाइए कुरबान साध सेवा बडभागी पाइये साध संगर कीर्तन गाइये अनक बिगंदे साधु राखे हर गुण गाय अमृत रसा के उड़ गई संत दर आया सर सुख नानक दे पाया मृत को जीवन हर भुखे को देवत आधार सर्वधान जा की दृष्टि माहे पर लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका वो करने जो तिस बिंदु सर्ववा ना हो जब जन सदा सदा दिन रहनी तब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा उसका नाम दिया नानक सो जन निर्मल दिया जाके मन गुरु की प्रतीत ते जन आवे हर ब्रह्म चीत भगत भगत सुनिए ते रोए जाके हृदय एको होए सच कर

को शिवे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत बेखनहार नाम सत सत सत्यावन हार आप सत सत सबधारी आपे गुणा पे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत सत जस सुनता बुझनार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सास रूप हृदय जन मान्या करण ग्राम दिन मूल बछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया बहते डरपोय बसाना शिव जा तस्माय समाना बस्त माए रे बस्त गटाई ताको बिना कहना जाई बुझे बुझनार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रती ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत ठाकुर का सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम गरम सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सा सा संभारे अपने जन का प्रदा ठाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप राखे तागी गतमित कोई ना लाख है प्रभ के सेवक को ना पहुँचे प्रभ के सेवक पूछते उचे जो अपनी सेवा लाया नानक सो दे सेवक दया दस प्रगटाया निकी गिरी मैकल रख है भस्म कराए लश्कर कोट लख है।

प्रभ जब ये भी अमृते मंत्र पिया नाम रतन जिन गुरुमुख पाया तिस किशवर नाई दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम राजो जंत्र बताने मंतन नाम में नाम समाने उठत बैठ सोबत नाम कहु नानक जन कह सदकाम बोलो जस जेबा दिन रात प्रभ ने जन कीनी दात करे भगत आत्म कह चाये प्रभ ने सो रहे समाये जो हो वाह सो जाने प्रभ ने गौ कम पछाने तिसकी महिमा कौन मखानो तिसका गुण गाय करा जानो आठ पैर प्रभ से जूरे कहु नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी उठ ले मन तन बना तिन जन देहे जिंजन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी सर्व सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अबर सयानम सगरी शार्त।

సాధుగురు తిసుగా నా తిసుగా సాంగ సేకుదురా నాన్నగారు గురుగా అష్టపది సద్గురు సిక్కి కరా ప్రతిపాల సేవకో గురు సదా దవ్యాల సిక్కి గోర దూరమత మల్హరాయ గురు భచనీ హరనామ చరాయ సద్గురు సిక్కే బంధన కాటాయ గురుకా సిక్ బిగాడ్ హటాయ సద్గురు సిక్కో నామ తందే గురుకా సిక్ బిడ భాగీ హే సద్గురు సిక్క హలత పల సువారే నానుక సద్గురు సిక్కో జీనాల్ సంభారాయ గురు కే గ్రహ సేవక జో రహ గురు కియా గయ మన మహ సహ ఆప సుఖో కార కాశనా జనావే హర హర నామ హృదయ సత్యావే मन बिचार सतगुरु के सतगुरु के पास सेवा के कारण जरा सेवा कर तो इन्हें कामित सुखो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेव गुरु की मातले बीस बिस्वे गुरु का मन मान्य सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुरु हृदय हर नाम अनक बार गुरु को बल जाओ सर्वनिधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म के आप नहीं कश परम सह सहन बलया ना जाइए नानक ऐसा गुर बटभागी पाइए सफल दर्शन पेगत पुनीत परसद चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गे गवे सुनकर बचन करन आगा ने मन संतो का तम पतियाने पूरा गुर रखियो जाका मंत्र अमृत मिखे हुए संत गुण बेन की मित नहीं पाए नानक जिस भाव तिसलय मिलाए जे बाए सत नेक सतपुर पूर्ण विवेक कहू बोला पौचत ब्राह्मी काउ बोला पौचत प्राणी अगम अगोचन प्राप्त निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत कदे ना पाई अनक भगत बंदन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरहे सदबले हरि सतगुरु प्रे नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हर रस पावे जन गोए अमृत पीवे अमृत सो होए उस प्रकार नाही कदे बिना जाके मन प्रगटे गुमता आठ पैर का नाम ने सच बदे सेवको देवो माया के संग न लेव मन में हर मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परमो दुख तह ते नासे तपत माए ठांड बरताई अनद भ्यात बनाठे भाई जन्म मरण के मिटिया देसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाओ चुका निर्भोय बसे सगल ब्याद मनते खै नसे जिसका साधन कृपा धारी साध संग जब नाम मुरारी तित पाई चुके ब्रह्म गबन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण पी वही करा धारण सगली बोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे बाहर बिंदु जा नाही को सर्व निरंतर एको सोए ओत बोध रभे रूप रंग पहे प्रगा साध गय संग रच रचना अपनी गलधारी

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक समर नाम आधार अवर पाप सब मीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण का सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर गह हो नाम रवत ए तन संचो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन का उचार कुंट उठता वे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख कुंड पाछे मीत सो सुख साधु साधु संग प्रीत जिस सुभा को करे भली करनी सास बाबा जी हर की सरणी अनुग बावी रोग ना जाए रोग मिटे हर आप खदराए सर्व निधान मेर नाम निधान जब नानक दरगे प्रवान मन प्रबुद्ध हर कह नाय दैद स्थावत आप बैठाए ताको बिघन न लागे कोय जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाव पवन से पूर्ण हो आज भगत आत्म बरगा तत्कर जस जाए बसे विनाशी कहो नानक काटी जम फांसी तद विचार कहे जन साचा जन्म रह सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभु सेवा त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म गावे उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छूट नारे सेमरत सास वेद विचारे हर की भगत गुरु मन लाए मन मंचत नानक फल पाए संगना चाल तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुध मीत गुटम अर बनतांते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तारंते कहो कमन छुटकार आ सस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदी है तुस बजे ना वे गाना नाम बेसार नानक पछताना गुर की बातों ले आने भगत बिना बड़ डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल भग जाहे आप जपो अवरा नाम जपाव संत कहत रह दगत बाव सार पुछ सतर को नाम सह सुभाए नान गुण गाओ गुण गाव तेरे उतर समैल बिन जाए हो मैं बिख फैर ओहे अजन बसा सुखनाल सास ग्रास हर नाम संभाल शाड सयानम सगरी बना सा संग पावे साच धना हर पूंजी संज करो व्यवहार यहाँ सुख दर गया जयकार सब निरंतर एको देखो नानक जाके मस्त गलेख एक एको जप एको साल आह एक सिमरे को मन आहे एक सके गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आ पूर्ण पूर्ण प्रभ्याप अन्न विस्तार एक दब एक रात पर गए

प्रजापष्टपति जब कार्य काशना दृष्टेता पापन तब कहते होता जब तारियापन सुन समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिहना जापत तब हर सौ कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमो कहाँ कि सोभत परम आपन खेला भरतीजा नान करने हार न दूजा जब बोध प्रभ के भरत नहीं तब अंध भगत कहो किसको गनी जब एको तब अंध कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन आवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत रहा तब कमन ने डर कमन कत डराए आपन चलताव करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त के पूषद लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे जब यापने आप यह चर्जा नानक आपद रूप आप यु प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल शद्र का लगत कौकीस जय जो स्वरूपी जो संग समाव तय किसे पुह का मंत्र बताव करण करावन करने हार नान करते का नाह सुमार जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब कौन भाई माए माए बाप मित्र सत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तय भेद कतेब कहा कौशीन जब अपने आप रुतार है तो शव शगन अपशगन कहाँ विचार है जापनु जापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जा अशल अशेद अपे समाया ऊहां किसे व्याप्त माया आपस को आपे आदेश तेगुण का ना ही प्रवेश जा एक एक, एक भगवंता तय कौन अचंत किस लागे चिंता जे अपने आप पतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुँचा या प्रचो प्रपंच अकार ते गुण में किन्नो विस्थार पापन तय पही कहावत कहो नर को स्वर्ग मंशावत आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पैपार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखा खेल संकोचे तो नानक एक ज अवगत भगत है आप ज पसरे पासार संत प्रताप धो पाका अपे तनी उनकी शोभा उन्हु बनी आपे कौत करे अन जोज अपे रास भोग अंदर जोग जिस भावत से अपन नाए लाभ है जिस भावत से खेल खिलाव है बेसुमार अथा

राष्ट्रपति, आप कथे आप सुनने आर पे का विस्तार जात सभावे सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम दे भिन्न नहीं किछु आपन सो सब जगत परोए जागो प्रभु जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को राज सराखे तस कोई ना मारे सो मुआ सिफनो मिसार है तिस तज अवर कहाँ को जाए तिस तज अवर कहाँ को जाए सब श्रेक निरंजन राय।

संजना का पेखम सा ब्रह्म संजना सुने सो भजन संजना का पेखम सा ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो भजन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी ये रहत साध भजन साधु सब कहत जो जो है सोई सुख माने करन के राम नहार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब बोही आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पात तिस भाविता करे विस्तार तिस भाविता एक अंकार अनकला लखी रह जाए जिस भावित सिलाए मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतरगज साब जनाए नान तजना बुझाए सरभूता प्रतारा सर्वरहना पेखण हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आपन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की निमाया सबके माद अलभ तो रह जो किस कहना सो आपे का है आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इसते हुए सो ना ही बुरा उरे कहाउ कने कश करा आप भला करतूता तने की आपे जाने अपने जी की आप साझ धारी सब साज।

विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, मन सुरत होए मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध।

मन मार्ग ठाग न पाए मन पास्यों परगट जाए मन मागुना चले पंथ मन धर्म सेती संबंध

निमहतंग अंजेन महतंग भंजेन महतंग नामेन महतंग ठामेन महतंग कर्मंग महतंग धर्मंग निमहतंग अकर्मंग निमहतंग अधर्मंग निमहतंग नामंग निमहतंग अतामंग निमहतंग दीते निमहतंग पीते निमहतंग अबाहे निमहतंग अटाहे निमहतंग अनिले निमहतंग अनादे निमहतंग अशेदे निमहतंग अगादे

संयुक्ता सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांतवे प्रसाद आदरूपे अनाद मुहूर्त जवन पुरखे अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेवादि उदार सर्वपालक सर्व

लायक सर्व कायक सर्व गंत सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व साह तर ना जान ही जेह वेद और कदेव सर्व साह तर ना जान ही जेह रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नेत भागत नेत कोट सिमृत प्राण साह तर नाव ही वह चित मत प्रशांत वह प्रसाद

अनुराग गए। तेरे भगत स्वरूप है, अचेज है, छूत है, के नरकंद प्रनाश है, पृथ्वी और प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है। विभुक्त स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, निरुक्त सदा है। विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, पर जुगत अनूप है।

पाण पाने नमः कलह कर्ता नमो साद रूपे नमो इंद्र इंद्रेय नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस हासे नमो बाघ बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नमे

सदा साचिदानंद सतरंगना सिंह करी मेल कनी दास महतल निवासी अजय विभुते गजाय गुनी में हरि अंग करी मही में

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कड़ कड़ के पड़ पड़ की जाने जबूद करख करा करतार प्रजा तरत तब देह अपारा

पाई। संबद सत्रह सहस पनि जय अर्ध सहस फण तीन कह जय भाद्रव सुदिया तमी रव वार तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते कुआं तरह नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक गहे माते कन मान्यो।

जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संघ जी आप संगतां ने अमृत वेले तो गुरु घर हाजरियां भर के नाम सिमरन नाल जुड़ना कीता, उपरंत साहिबां दे दर्शन दीदार कीते। श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप पंज बाणियां दे नेत्रे माते साहिबां वालों बख्श मुखवाग सरवण कीते हन। सतगुरु साहिब जी रहमत करन, आप संगतां दी दर हाजरी प्रवान करन, दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन। सवाब हुण श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन दी रमता हो रही है। आप संगतां दी सेवा विच सत्कारयोग रागनी भाई पिंदर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब वाले आप संगतां नूं आसा जी दी वार दे कीर्तन सरवण करवा रहे हन जी। बड़े प्यार नाल सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

साहिब हो दयाल कृपा करत साई कर कराए छी सेव सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम बनाए छी हुकम ने प्रमाण तक किस में का महल पाए छी कसमे पावे सो कर मन हो चिंदा सो फ

तुमरि गात मित तुमहि जानी नानक दास। बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही त्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास राम दासे हुए सहाय। हरदन हर गोबिंद नव सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदयावे ताय। सब थाई हुए सहाय।

मालिक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रत पालो हम बारक तुमरे तारे सजन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू जिस पास बैठे हाँ सोही है

0: होई डरे
1: प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागे
0: प्रभु के सिमरन अंतर जागे
1: प्रभु के सिमरन पौ न व्यापे
0: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
1: प्रभु का सिमरन सार के संग
0: शरण निदान नानक हर रंग
1: प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद
0: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बोध
1: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा
0: प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा
1: प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी
0: प्रभु के सिमरन दरगे मानी
1: प्रभु के सिमरन ऐसो भला
0: प्रभु के सिमरन सो फल फल।